0: Radio NRN 99.1. समय को ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ।
3: ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: डिसोम फाइबर नेट।

0: कामना सेवा विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा।
1: हरी शरण, म लक्ष्मी भुसाल सुनिराछु।

0: रेडियो एन आर्यन 99.1
1: हरो विषयमा तारो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ
2: ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक
3: डिसोम फाइबर नेट

0: लेख का फल बाकी जानना मेरा दुल्या बन का कोई कुरड़ी बुझन छकी दुखारी का मन का
1: दमोली FM 94.2 समुदाय को आवाज।
2: ए बहिनी घर त चिटी कहीं बनाए छौ हैन यति राम्रो फर्नीचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ
3: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई हाम्रै व्यासचर किसान हार्डवेयर को पछाडी पट्टी रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि
2: हजुर हामी कहाँ स्टील को दराज कुर्सी टेबल साथै काठ को सोफा दराज पलाङ पर्दा कार्पेट विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ आरती काष्ठ उद्योग
3: ब्यास 4 मेन रोड दमौली तनहुँ
2: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ फोन 9816161326 9843006605 9819113527

0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: सुरक्षित भविष्य को लागि जीवन बीमा गरौं। जीवन बीमा का लागि राष्ट्रीय जीवन बीमा कंपनी ने रोजौं। न्यून बीमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त एकमात्र जीवन बीमा कम्पनी, बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, प्रधान कार्यालय रामशाहपथ
2: काठमाडौँ। म लक्ष्मी भुसाल सुनिराछु रेडियो एनआरएन 99.1
3: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो फिल्मी मेलोडी।

0: सोफा कवर आधुनिक डिजाइन में सुपथ मूल्य में सिलाइनों का साथ ही कपड़ा पनी उपलब्ध छ। सुसन्देश टेलर्स नाकुआ ब्यास दुई दमौली तनहुँ। सुट तथा दौरा सुरुवाल स्पेशलिस्ट दिनेश घले। सम्पर्क 9843338290 9811571760।
1: दमौली FM 94.2 समुदायको